0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसीं फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आदि गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई है जियो सतगुर मिले सुभाई

0: धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज तिना दे दरों घरों रहमत हुई बख्शिश हुई जो अज दा ए पवित्र मुख वाक साध संगत आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी दे पासों पवित्र बचन दे सिरलेख सरवण कीते हन। राग तनासरी अंदर संत रूप दे अंदर सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां दी सिफतो सलाह दे अंदर अति सत्कारियो गुरु के कीर्तनीए महान बाणीकार भाई साहब भाई सत्ता जी भाई साहब भाई बलवंड जी अपनी मुबारक रसना तो जो वचन उचारण किते धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। ऐसी वडियाई दे मालिक सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण कीता अज दा ए पावन उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक अंग 690 ते सुभायमान है। हजूर ने कृपा कीती तनासरी राग शंत रूप विच उचारण कीते हुए इस पवित्र वचन नूं पहले घर सुरताल दे अंदर गुरु के कीर्तनियां नूं इस पवित्र वचन नूं गायन करन दी हदायत कीती है।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद
0: रब्बी बाणी दे अंदर साध संगत जदों धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने इसे पवित्र धरती ते पावन स्थान गुरुद्वारा रामसर साहिब सरोवर दे कंडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप की संपादना कीती भाई गुरदास जी नूं सत्कारयोग मुख लिखारी ला अमृतमई पावन बाणी की लिखाई की सेवा लई ते जदों जदों सतगुरु जी किसी नवें सिरलेख हेठ पवित्र बाणी अंकित करवाउंदे ने ते रब्बी बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की यह अंदरूनी नियमावली है कि हरेक सिरलेख के आरंभ में उस अकाल पुरख वाहिगुरु का जिहड़ा मंगल किया है किधरे संपूर्ण बहुताद संखेप मंगल। सो इत्थे भी सतगुरु जी ने संखेप मंगल किया है कि परमात्मा एक है एक होके भी वह अदुत्ती है एक रस सारे संसार दे विच व्यापक है और उस एक दे नाल जिहड़ी अभेदता है जो सिक्खी का मुढ़ला असूल है कि सतगुरु की मेहर तो बिना सतगुरु जी की रहमत तो बिना उस एक दे नाल अभेदता नहीं हो सकती है।
1: हर जीओ कृपा करे ता नाम त्याई है जीओ।
0: अज दा ए पवित्र बचन जिदी आरंभक बोल हर जीओ कृपा करे ता नाम त्याई है जीओ अखरी अर्थ के हे भाई परमात्मा रहमत करे ताई नाम त्याया जा सकता है परमात्मा रहमत करे उदी बख्शिश दे नाल ही उदा नाम जपया जा सकता है। सतसंगत रब्बी बाणी अंदर जिहड़ा सब तो प्रधान विशा है वह है परमात्मा दा नाम। एक ओंकार तो लैके संपूर्णता तक कोई ऐसा उपदेश नहीं कोई ऐसा वचन नहीं जिस वचन दे अंदर सानू जीवन नूं सफलाउण वास्ते रब्बी बंदगी रब्बी कीर्ति रब्बी सिफत सलाह दा उपदेश सत्कारयोग बाणीकारां ने सतगुरु साहिबान ने ना कीता होवे। कहण तों भाव कि हरेक वचन दे अंदर सतगुरु जी ने किसी ना किसी पंक्ति राही किसी ना किसी पवित्र वचन दे राही सानू रब्बी बंदगी विच जुड़न दी तागीद प्रेरणा सतगुरु जी ने कीती है। कारण क्योंकि सानू मनुखा दे त्रुट के मालक ने बख्शिश कीती ते मनुखा जीवन दा जेड़ा मुख प्रयोजन है मुख मनोरथ है वह करते दी याद विच जुड़ के अपने जीवन नू सफल करना। बार बार सतगुरु जी सानू इस पासे प्रेरणा करदे ने। सत्कारयोग भगत कबीर साहब जी उन्हां दा पवित्र उपदेश के गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। ते किधरे जीवन का मनोरथ भुल ना जाइए, चेते करवाउंदे ने कि भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही लाहो। भाव है कि सानू बाणी बार बार मनुखा जीवन के मुख मनोरथ बारे याद कराउंदी है। ते जदों जदों बाणी अंदर नाम नू जपण दी नाम विच जुड़न दी सतगुरु जी प्रेरणा करते ने, ते किस तरीके नाल किस ढंग नाल जपना है सतगुरु जी ने बाद लील अनेक वचन इस प्रथाए भी बख्शिश किए। क्योंकि सिख होने के नाते जिहड़ी सिखी मर्यादा गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू दिती है, उहदे विच सब तो पहला हुक्म ही यह किया भी ऐ सिखा अमृत वेले उठ, तेरी दिनचर्या ही रब दे नाम तो जिहड़ी शुरू होनी चाहीदी है। गौड़िकी वार अंदर गुरु रामदास महाराज जी का पवित्र श्लोक साढ़े सारिया के ध्यान में है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै, उद्दम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सारण आवै। पर जदों बाणी अंदर पवित्र बचन दे असी दर्शन करते हैं ते अमृत वेले उठन लई रब रब जपन लई पावन बाणी का पाठ करन लई सेवा लई सिमरन लई जदों समय समय से प्रेरिया जांदा ना संगतां नूं, भावना वाले साध संगत गुरु हुक्म नूं सत करके जीवन विच कमाउंदे ने, पर कई बार असी जदों इस राह दे उत्ते तुरन लई तैयार ना होईए ते अपने वल्लों एक उजर पेश करदे हां कि हाले साडे ते कृपा नहीं हुई। जदों कृपा होएगी उदों परमात्मा आप ही जपा लेगा। अमृत छकण की प्रेरणा की जाए, बेनती की जाए, साढ़े ते हाले कृपा नहीं हुई, जदों कृपा होएगी जदों कृपा होएगी उदों अमृत छक लवांगे। सतसंगत कृपा के दो पहलू ने। उदाहरण के तौर पर जदों असी अपने घरां तों चल के दूर दुराडे नगरां तों गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन दर घर के दर्शन प्रसन करन वास्ते आए हैं, तो पहला उद्दम सानू यह करना पिया भी असी अपने घर तो उठे, कोई बस से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई अपनी गड्डी से आया, पहला उद्दम यतन सानू करना पिया भी असी उठ के अपनी गड्डी दे विच बैठे, तो गड्डी च सवार होके फिर सानू जिहड़ा सी सानू मंजिल तक जिहड़ा सी ड्राइवर लैके आया। बस च आए तो पहला उद्दम यह किया भी असी अपने घर तो उठ के बस स्टैंड तक गए, बस च सवार हो गए, तो अगे हुण जिहड़ा सी असी अपना समर्पित कर दिता भी हुण बस का ड्राइवर जिहड़ा सानू साडी मंजिल तक लैके जाएगा। कोई ट्रेन दे विच गुरमुख प्यारा आया घर तो चल के स्टेशन तक जाना, यह उस गुरमुख प्यारे का उद्दम है। अगे ट्रेन दे विच बैठे टिकट लै ली ते हुण ट्रेन ने जिहड़ा है उस पड़ा तो उहदी मंजिल तक उहनू लैके जाना है। इस सफर दे जिस तरह साढ़े दो हिस्से ने भी पहला उद्दम असी करना, अगे जिहड़ा जदों असी अपना आप समर्पित कर देने आ ते जिहड़े साधन राही अपनी मंजिल ते पहुंचदे आ उह साधन सानू साडी मंजिल तक लैके जांदा है। ठीक इसे तरह साध संगत जदों असी अध्यात्मक मार्ग दे अंदर उहदी बख्शिश दा जिक्र करांगे ना, ते इह परमात्मा ने पहली बख्शिश तां साडे ते कर दित्ती है भी सानू इह पंज भूतक सोहना जिहड़ा शरीर मालक ने दिता है उद्दम सानू करना पैणा भी अमृत वेले उठना है, इशनान पान करना है, तैयार बार तैयार हो के असी अपने घर तो साधन तक पहुंचना है जां बस स्टैंड तक पहुंचना है जां स्टेशन तक पहुंचना है, ते अगे जिहड़ा उह साधन सानू साडी मंजिल तक लैके आउंदा है। इसे तरह साध संगत अध्यात्मक मार्ग विच वी असी गुरु वाले बनना है, गुरु का पला फड़ना है, गुरु का लड़ फड़ना है, अमृत छकना है, गुरु की सिखी नूं धारण करना है, ते अगे फिर समर्पित भावना दे नाल जिस तरह गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कर रहे ने ना जिक्र कि हर जीओ कृपा करे तो नाम त्याई जीओ। इस समर्पित भावना में गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने कृपा की है भी परमात्मा हुण आप ही रहमत करो, आप ही तुसीं अपना नाम जपाउणा है, भाव कि जदों परमात्मा रहमत करदा है ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ।
0: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗਤ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਰੰਭਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨਾ। ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਲ।

ने सदीवी आनंद आत्मक खेड़ा सेवक दे जीवन विच आउंदा है ते इहदे नाल नाल हजूर कहिंदे अहंकार होमै तजै माया सहज नाम समावे आत्मक अडोलता विच टिक के जिवें जिवें रब्बी प्यारा नाम जपदा है परमात्मा दे नाम विच उहदी सुरत लीन हुंदी है ते परमात्मा दे नाम विच सुरत लीन करदिआं जीवन दे विचों औगण ने जिहड़े आत्मक जीवन नूं बर्बाद करन वाले जिहड़े विकार ने उहदे विच अहंकार है हजूर कहिंदे होमै तजै माया इन्हां विकारां तों वी जिहड़ा है अपने जीवन दे विच त्याग करना है। ठीक उस तरह साध संगत जिदां असीं नरोए शरीर की आस लैके किसी डॉक्टर दे कोल किसी वैद दे कोल किसी हकीम दे कोल जाने आ किसी ना किसी रोग तो पीड़ित होकर जदों वैद का सहारा लिया जाता है तो सियाणा वैद साडे रोग की पहचान करके सतसंगत सानूं दवा दारू भी देंदा है ते नाल कुछ हदायतां करदा भी इन्हां चीज़ां दा अपनी जिंदगी च परहेज करना है। दवा दारू भी जरूरी है परहेज भी जरूरी है। ठीक इस तरह आत्मक जीवन के अंदर जे नरोए होना तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहिंदे जिथे गुण गाउंदिआं प्रसन्न चित रहना है आनंद विच रहना है खेड़े विच रहना है उत्थे इन्हां औगणां दा जीवन दे विचों त्याग भी करना है ते इन्हां औगणां दा जीवन विचों त्याग करदे होए अहंकार होमै तजै माया सहज नाम समावे आत्मक अडोलता विच टेक के परमा

0: संगत पावे भागहीन भ्रम चोटा खावे बिन भागा सतसंग न लभे बिन संगत मैल भरी जय जियो। जदों वड्डे भागां नाल संगत प्राप्त हुंदी है सत संगत मिले वड भाग तां हर रस आवे जियो ते संगत विच्चों फिर उस हर रस दी प्राप्ति हुंदी है।
1: आन दिन रह लिवलाए तां सहज समावे जियो।
0: गुरु कृपा ते सत संगत दी बरकत दे नाल आन दिन रह लिवलाए हर रोज गुरमुख प्यारे लिवस परमात्मा दे नाल जोड़ के रखदे ने सहज समावे जियो। आन दिन रह लिवलाए इत सहज समावे जियो। हजूर कहिंदे भी हर रोज उस परमात्मा दे नाल लिव करके जुड़ना तां सहज समावे जियो ते आत्मिक डोलता विच टिक के इस तरह गुरमुख प्यारे उस मालिक दे विच लीन हुंदे हन।
1: सहज समावे तां हर मन भावे सदा अतीत बैरागी।
0: आत्मिक अडोलता विच टिक के जेड़े गुरमुख प्यारे सहज समावे आत्मिक अडोलता विच टिक के उहदे विच लीन हो जांदे ने तां हर मन भावे तां उस परमात्मा दे मन नूं भा जांदे ने चंगे लगदे ने। सहज समावे तां हर मन भावे फिर उस गुरमुख प्यारे दे उत्ते अगली बख्शिश वरतदी है सदा अतीत बैरागी। ओ माया दे मोह तों सदा अतीत निर्लेप रहिंदा विकारां वाले पासे तों अशोह रहिंदा। जिथों तक अतीत जां बैरागी होण दा सवाल है ना साध संगत साडे देश दे अंदर एक वर्ग है जिहड़ा कहिंदा भी इन्हां विकारां तों उपरामता वास्ते जिहड़ा है घर परिवार जिम्मेवारियां परिवारक संसारक जिहड़ियां छड़ देणियां चाहीदियां ने। परिवार ते समाज दे विच रहिंदिआं अतीत बैरागी नहीं होया जा सकता। पर गुरमत दा फलसफा यह है साध संगत जिहड़े लोग इस सोच दे धारनी हो के अपने घर परिवारां तों दूर चले गए उन्हां संबंधी कबीर साहब दा निर्णा है भी ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा अजों बेकार न छोड़ी पापी मन मंदा। गुरमत सानू किते भी परिवार जां संसार छड्डन दा उपदेश नहीं करदी अपनियां परिवारक संसारक जिम्मेवारियां तों भज्जना नहीं बल्कि परिवार ते समाज दे विच रहिंदिआं होइआं जिहड़ी जुगत सानू गुरु नानक साहब जी ने दृढ़ करवाई ना भी जैसे जल मैं कमल निरालम मुरगाई नैसाने सुरत शब्द भाव सागर तरी है नानक नाम वखाने उस जुगत का सिख धार।

0: मन पावै सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी।
1: तो जिस गुरमुख प्यारे दी मालक दी रहमत सदका उदे नाल लिव लग जांदी है। हजूर कहिंदे हलत पलत शोभा जागे अंतर उन्हूं लोक परलोक दे विच इज्जत मिलदी है।
0: हर क सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे।
1: जिहदी लिव उहदे चरणां नाल जुड़ जाए साध संगत हर क सोग दोहा ते मुक्ता। दो पल हरेक मनुख की जिंदगी विच आउंदे ने, हरख भी सोग भी खुशी भी गमी भी वाधा भी घाटा भी नफा भी नुकसान भी। पर जिहड़ा परमात्मा दे चरणा तो टुटिया होया है उहदी हालत नूं जदों हजूर ने बयान किया, हजूर कहिंदे जे हरख होवे ते साध संगत खुशी दे विच कीवा होके खुशी देण वाले नूं भुल जांदा है। कई वारी जिंदगी विच कोई सोग भाव के दुखदायक घटना वापर जाए तो वह इन्ना कह लो भी हीण भावना में चलिया जाता है, दुख के इन्ना क जड़ा विचलित हो जाता है भी वह अंदर जड़ा है घबरा जाता है। गुरमत कहती है भी ना खुशी के कीवे होकर उन्होंने भुलाना है तो ना दुख के जड़ा घबरा है। गुरमुख प्यारियां का जीवन की है? जीवन में खुशी आवे यह भी वो भाने में है, गमी आ गई यह भी वो रजा है। वह हर करते की रजा को प्रवान करते हैं। हजूर कहते हर एक सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे। वह गुरमुख प्यारे परमात्मा दे कीते हुए नूं सत करके प्रवान करदे हन।
0: सत संगत मिले वड भाग तां हर रस आवे जीओ।
1: वड्डे भागां नाल जदों जीवन विच सत संगत नसीब हुंदी है तां रंदगी दा रस नाम दा रस आउंदा है।
0: दूजै पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ।
1: हुण तस्वीर दा दूजा पक्ष साध संगत बयान कीता, पहला सी भी जिहड़े

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 Avenue South West Calgary। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 Avenue North East Calgary। सांझा पंजाब दी तीजी नवीं लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V Falcon Bridge Boulevard North East Calgary। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: श्री विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी नारद जी व्यास जी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम पावर। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो तपस्या करता हूँ, दुर्गा की साधना करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, इस तो ऊपर कोई भगवान मैं नहीं जानता। दुर्गा कहती है कि ओम जाप है ब्रह्म सबसे सुप्रीम पावर है, उसका जाप करो तुम्हारा कल्याण हो और ब्रह्म लोक में चले जाओगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ब्रह्म कहता है गीता जी में आपको सुना ही दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म नहीं होगा। उसके लिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी कहता मैं परिचित नहीं उस ज्ञान से, ना उस विधान से, ना उस समाधान से, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अपुनात्माओं के जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका बट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताए इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है, किसी भी प्रकार का संकट प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुनात्माओं यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत, फिर हमने फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की, जिसके ऊपर कर टूटना वो टूटे टूटेगा फिर क्या की भक्ति करेगा, वो करली भक्ति पर तो गोटी लावेगा, वो शराब पीने लग गएगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है, परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है किसी का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किर का जहर का कण भी कौन खाओगा, नो पता लग गया यू कण पड़ा जहर का विष का हाथ भी ना लाव आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानता वश रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये व्यस खा रहे हो व्यस। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा, छुआ भी कोई नहीं, दूर कर जाएगा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। सुनाया था इस दास ने आपको कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, वहां पर एक महादुखी ब्राह्मण पहुंच गया। महर्षि जो रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी, वो केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, उनके ही गुरु बनते थे। और एक ब्राह्मण बहुत गरीब, घर में बहुत उसके ऊपर दोहरा संकट आया हुआ था, अपने यानी वो अर्थार्थी भी था, आर्त भी था, ना वो जिज्ञासु था ना ज्ञानी था। दो प्रकार के उसके ऊपर आपदाएं थी, एक तो घना निर्धन था और ऊपर से अपने परिवार के ऊपर उसके ऊपर संकट आया हुआ था, उसके बच्चे बीमार, उसकी पत्नी बीमार, वो स्वयं भी दुखी और बहुत बुरा हाल। और स्वामी जी ने बहुत कुछ साधनाएं बताई थी लेकिन वो उसको कोई राहत नहीं, तो जब राहत नहीं मिली तो आखिर में ये सभी यही कहते हैं कि ये तेरे प्रारब्ध कर्म है, ये भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे लेक्चर झाड़ रहा था स्वामी रामानंद जी उस अपने शिष्य ब्राह्मण को। परमात्मा कबीर जी ने कहा, स्वामी जी जो आप कह रहे हो कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, क्या कौन से ग्रंथ में लिखा है? रामानंद जी ने कहा कि देवी पुराण में लिखा है, और बृहस्पति जी भी यही कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी भी यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। अब वो देवी पुराण उठाकर पढ़ के सुना दिया स्वामी रामानंद जी ने, जैसा कल दास ने आपको शुक्राचार्य जी के और बृहस्पति जी के विचार सुनाए थे और ब्रह्मा जी के, कि उन्होंने कहा है कि कर्म तो भोगने से ही कटता है, सुख हो चाहे दुख प्राणी को भोगना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि आप वेदों को ऑथेंटिक मानते हो या पुराणों को? अब रामानंद जी हर का ज्ञान तैसा है था बालकों जैसा, तो रामानंद जी कहने लगे, स्वामी जी के मैं दोनों को ही ऑथेंटिक मानता हूं, वेदों को भी ऑथेंटिक मानता हूं और पुराणों को भी ऑथेंटिक मानता हूं, क्योंकि इनका राइटर एक ही है। तब परमात्मा ने बताया कि राइटर इज राइटर, राइटर तो राइटर ही होता, लेखक था वो। अब जैसे कोई क्लर्क है और उसका बॉस कोई बोल रहा है, वो लिख रहा है, उसका राइटर, उस लिखने वाले का उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई अपने विचार थोड़े बहुत मिलाए हैं वो अलग बात है, उस सेंटेंस को सुधारने के लिए कोई कोमा मात्रा ला दी वो दूसरी बात है। तब परमात्मा ने कहा, देखो वेद जो है, वेद ये परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्म के अंतःकरण, काल के अंतःकरण में फीड कर दिए गए थे, फैक्स कर दिए गए थे, वो क्या कह रहे, मीडिया प्लेयर्स के भेज दिए थे, फैक्स कर देते एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, पूरे की पूरे तो है ना चले जाते हैं, शब्द के शब्द, फिल्म की फिल्म दूसरे में फीड हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो ऐसे परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में ये वेद डाल दिए, और समय आने पर वो अपने आप बाहर आने थे, तो उसके श्वासों द्वारा, ब्रह्म के इस ज्योति निरंजन के श्वासों द्वारा ये पांचों के पांचों वेद बाहर आ गए थे इसके शरीर तक। तो इसने इन पांचों को पढ़ा तो पांचवा जो सूक्ष्म वेद था उसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी, वो इस काल ने नष्ट कर दिया, ये चार वेद दे दिए। इसमें ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का है लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का विधि मार्ग केवल ब्रह्म तक का है, ओम नाम का। तो इस जो वेदों में ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा की महिमा है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म की साधना इस बताई है कि ओम नाम है इसका, और उस परम अक्षर ब्रह्म का जो साधना है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। अब उसमें परमात्मा ने कहा कि जो गीता जी का ज्ञान है ये वेदों वाला ज्ञान है, और वेदों का सारांश दिया है किसने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो वेद और गीता जी एक ही है, गीता जी में थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि इस श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपना मत कुछ प्रवेश कर दिया है, और वो मत यदि वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको हमने त्याग देना होगा। जहां तक बात रही पुराणों की, ये पुराण क्या है, ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अपना ज्ञान है, और ब्रह्मा जी से सुनकर फिर अन्य ऋषियों ने कुछ अपना विचार, अपना अनुभव, और साथ में ब्रह्मा जी के का रेफरेंस दे दे के ये इतने बड़े बड़े 18 पुराण बना दिए। अब जो पुराणों में लिखा है कि कर्म भोगने से ही समाप्त होंगे, प्रारब्ध में लिखे पाप का नाश नहीं हो सकता, और जब तक आपके प्रारब्ध में यानी कर्म में किस्मत में लिखे हुए पाप का नाश नहीं हुआ तो आपको सुख नहीं हो सकता, और आपको भक्ति से सुख नहीं हुआ तो के चाटा इसी भक्ति ने फिर कौन करेगा, सारे नास्तिक हो गए। इसी कारण से पूरा रूस पूरी चीन इन डुप्लीकेट ऋषि संतों के कारण भगवान वाला लाभ इनको मिला नहीं तो ये नास्तिक हो गए। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आप जी ने देवी पुराण में बृहस्पति जी के विचार सुनाए कि वो कह रहे हैं इंद्र को, पांचवें स्कंद में वो इंद्र को कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है और जो मस्तिष्क में लिखा वो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उधर से शुक्राचार्य कह रहे हैं प्रहलाद को कि ऐसा ब्रह्मा जी से मैंने सुना है, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा स्वामी रामानंद जी से कि ये विचार है किसी व्यक्ति विशेष के, एक ऋषि महर्षि के और ब्रह्मा जी के, ये भगवान के विचार नहीं है। पुराणों में और वेदों में भगवान का आदेश है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। यदि आप दोनों को सही मानते हो तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात होगी, पुराण कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो वेद ऑथेंटिक है, विधान है, वो परमात्मा का दिया हुआ आदेश विधान है, और पुराण एक ऋषि महर्षि संत और यहाँ के इन अल्पज भगवानों का ज्ञान है। तो पुराणों में जो वेदों से नहीं मेल खाता जो ज्ञान, वो व्यर्थ है, वो व्यक्ति विशेष का अपना सोच है। तो इसलिए हमने वेदों को ही फाइनल मानना होगा। अब इस तर्क के सामने स्वामी रामानंद जी के को कोई जवाब नहीं था। अपनात्मा जो व्यक्ति वहां रामानंद जी का शिष्य बना हुआ था वो ये दोनों की वार्ता सुनने लगा और कबीर परमेश्वर जी से पूछा आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो? तो परमात्मा ने कहा भाई मैं दानक हूं, कबीर मेरा नाम है और दानकों की कॉलोनी में रहता हूं, दुलाहों की कॉलोनी, सारा नाम बता दिया, इसी काशी में रहता हूं। अब क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो दुखी व्यक्ति उस ब्राह्मण गुरु को छोड़कर, वो ब्राह्मण तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे वहां, वो भी आ गया और उसने देखा ये तो वही महापुरुष है जो रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब परमात्मा की भक्ति साधना से सुख नहीं हो सकता तो भक्ति की आवश्यकता क्या है। तो उसका वह बात खटकी थी सचमुच, ये तो दो अक्षर की बात है। तो फिर परमात्मा कबीर जी से उसने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो परमेश्वर ने कहा भाई मैं दुल्हा हूं शूद्र, और तू ब्राह्मण है, देख ले तेरा समाज फिर तने गड़ेगा। तो इन्होंने बोला जी बाढ़ में जायो समाज, मेरी तो ढूंढी डिगी कति, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा है, बालक मेरे बीमार और ब्राह्मण तो मैंने 10 साल हो गए नाक रगड़ते थे, जो उसने साधना बताई स्वामी जी की मैंने सारी कर ली, कोई राहत नहीं। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया कि ये जाप कर और फिर अपने बच्चों को भी नाम दिलाना है, वो तो आशीर्वाद था दाता का। कहते उसी समय उसको ऐसा एहसास हो गया शरीर के अंदर जैसे कोई आपत्ति बाहर फेंक दी काट का परमात्मा। उसकी दो जवान लड़कियां थी, दो पुत्र थे, वो भी आप माइंड से हो रहे थे, कुछ ऐसा संकट सा उनका, उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। परमात्मा की कृपा से उसको राहत मिली, फिर बच्चों को नाम दिलाया, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो गए। 2-3 वर्ष के अंदर उनका सब संकट दूर हो करके सब कर्ज मुक्त भी हो गए। अपनात्मा अब वो प्राणी इतना सुखी हो गया, जगह जगह जावे अपने रिश्तेदारों को बतावे जो दुखी थे, उनसे कहे कि आ जाओ नाम ले लो मेरे गुरुजी से, तुम भी सुखी हो जाओगे, देखो आज मैं कितना सुखी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत कोई सुखी है वो परमात्मा को नहीं चाहता, और परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि सुख का माथे आग लगो पत्थर पड़ो जिस ते नाम हृदय तजा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब जिस प्राणी को आज सुख है वो दुर्भाग्य है उसका, किसका, जो भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति कर रहा तो ये सत भक्ति नहीं कर रहा। और सौभाग्य उस व्यक्ति का जो महादुखी था और यहां आ गया, रहते उसको राहत मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगा जिस तो भगवान तो दूर हो प्राणी, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी राखियो ताकि आपकी याद बनी रहे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वानंद नाम का एक महर्षि था, श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों भगवानों की साधना, त्रिगुण महिमाया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को रिजेक्ट किया है। त्रिगुण महिमाया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। कौन कहता है? ब्रह्म गीता ज्ञानदाता। अब कहता है कि मेरी भक्ति भी चार जने करते हैं, चार प्रकार के। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक बताया है, एक आर्थ, दूसरा अर्थार्थी और तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आर्थ तो वो होता है जिसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है और वो संकट के निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, वो कोई और सहारा नहीं लेता। कि जैसे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये इस तरह के कथाएं, ये गीत नहीं गाता वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अपना समाधान चाहता है। और ऐसी अर्थार्थी धन के लाभ प्राप्त करने वाला भी वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, अन्य कोई किसी की बनाई हुई कविताओं का सहयोग नहीं लेता। तो वो मेरा पुजारी है, ब्रह्म पुजारी है। और तीसरा वो होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है कि जैसे परमात्मा की तरफ में कोई पुण्यात्मा घर से चलता है, साधु संतों से मिलता है, तो वो उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेता है, 2 से 4 से 10 से 5 से 20 से उसने जो भी खचड़ा ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने अंतकरण में ठोक के और फिर वक्ता बन जाता है। तो इसको भी गीता ज्ञानदाता ने रिजेक्ट किया है कि ये तीन मुझे पसंद नहीं, चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और उसको मैं पसंद हूं, वो मुझे अच्छा लगता है। अब हम यहां जिज्ञासु के ऊपर आते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु एक सर्वानंद नाम के, जैसे ये महर्षि दानंद जो नकली कलियुग का महर्षि दानंद, ये जिज्ञासु था। इतनी तरफ थी इस पुण्यात्मा को पिछले जन्म की भूख थी भगवान की, घर भी छोड़ गया, अगर इसने इसे कर्म ठोक मिल गए, वह संत ऋषिर वो दंडी स्वामी इसमें सारा गोबर ठोक दिया और उस गंध ने यु प्राप्त करके वक्ता बन गया जिज्ञासु। इसने फिर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया जो का तू वो अज्ञान वो अभी तक बोली हाथों सिर पर दरें फिर थी। तो ऐसे ही एक सर्वानंद नाम का जिज्ञासु था, फिर विद्वान बन गया। उसने अपने समय में आसपास के सभी ब्राह्मणों को विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुधा सागर, यानी सभी सदग्रंथों को एक बैल के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला उसके मां रखा करता, ऊपर सुंदर कपड़े शुद्धता से रखता था और कोई भी उसके साथ वार्तालाप शास्त्रार्थ करता था तुरंत उठा उठा कर दिखा देते थे, वो चेले पकड़ा देते, वो अध्याय और पृष्ठ सुना देता, देखो इसके ऊपर ऐसा लिखा, निकाल कर देख लो। यानी उसने काशी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माता जो थी उसका नाम था शारदा रानी पंडितानी, वो इतनी दुखी थी उसका कोई प्रारब्ध का कर्म दंड था उसके ऊपर, तो उसने अपने बच्चे से भी कहा, बेटा मेरा कोई समाधान बताओ, तो बड़ा विद्वान पुरुष है। उसने भी जो जंतर मंतर बताए, फिर नहीं उसको को आराम हुआ तो किसी पड़ोसन ने आके बता दिया, ऐसे वो महापुरुष वहां गुफा में है, जाते दर्शन होते ही ठीक हो जाता, वो वहां भी गई, उसके द्वारा बताई गई साधनाएं भी की। तो जिस भी ऋषि महर्षि जंतर मंत्र झाड़ा करने वाले को जिसको भी जिसने बताया वहां पहुंच गई, सभी ने पहले तो अपनी क्रियाएं बताई, साधनाएं बताई, फिर लास्ट में उसको कह देते थे कि ये शारदा जी, ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, कर्म दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वैद्यों से भी खूब इलाज करवाया, बहुत पीड़ा में रहती थी, अंतिम सांस गिनने लगी कि कहीं भी समाधान नहीं है, तो मृत्यु के साथ ही ये दुख जाएगा। एक दिन वही पंडित जो उनका रिश्तेदार था, जो पहुंच रहा था घर घर जाके बता दो रिश्तेदारों को, आ जाओ गुरु जी आ रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, आ जाओ भगवान आए हैं, तुम्हें सुख हो जाएगा, वो भी पहुंच गया वहां कुदरती शारदा जी के घर पे। शारदा जी से पूछा, हाँ उससे पहले शारदा जी के पास एक बहन गई कबीर जी की शिष्या, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या, और उसने कहा कि शारदा जी कुशल मंगल पूछा, तो उस शारदा जी ने कहा, सर्वानंद की माता जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे जितना दुखी इस पृथ्वी में प्राणी नहीं, मैंने सब जगह इलाज करवा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट, सब जंतर मंतर साधनाएं भक्ति सब कर ली, मुझे कोई राहत नहीं मिली, सभी ने ये कह दिया है कि ये तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा कष्ट अंत होगा। उस बहन ने परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि शारदा एक अर्ज मेरी मान ले तू, तो हमारे भगवान से गुरुदेव से उपदेश ले ले, परमात्मा आए हैं। शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, वैसे तो मेरा दिल टूट चुका है, पृथ्वी पर कोई समाधान करनिया नहीं है, फिर भी आप इतना दृढ़ता से कह रही हो, बताओ आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, ट्राई कर लेती हूँ। उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर जी हैं, परम पूज्य कबीर जी। शारदा ने पूछा वो कहाँ रहते हैं, परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुल्हाओं की कॉलोनी में रहते हैं। जुल्हाओं की कॉलोनी में क्या काम करते हैं, कि वो कपड़ा बुनते हैं, धानक है वो, कहा जुल्हा है धानक है और क्या, जुल्हाओं की कॉलोनी में और पंडित जी क्यों करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। वो एकदम तो पड़ी थी खाट पर बैठ की, बोली खबरदार जो मुझे ऐसा बोला है, हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, हम धानक से नाम लेंगे जुल्हा से सूदर से। तो उसने कहा भी ना ले तो मर सड़क उठकाएगी।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110, 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਲੰਬਰ ਪੈਕੇਜ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਟਰ ਤੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 403-433-5555 ਯਾਨੀ 403-433-5555 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3501 23rd Street, ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
3: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਇਰਸ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਟਾਇਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ 403-899-1985 ਜਾਂ ਫਿਰ 403-899-1984 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 8616, 44th Street, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।

0: गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: परमात्मा कहते हैं, सोशल छिदर मैं करूं अपने दन के काज। हम सब उस परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं। इस काल ने अपने दूतों के द्वारा हमें ही, हमारे ही में से ही अपने दूत सेलेक्ट कर रखे हैं, जो मिसगाइड करते फिरते हैं और भगवान से दूर कर रखे हैं। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में। पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहां कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना। मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, अखाखों परिचित हो, और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज सुख दो समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले। शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरु जी कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरु जी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी में। उसको फिर तीन दौड़ी पड़ी, कहती वो धानक, वो नीरू का पुत्र, जो उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती, और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज। तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने मुंह फेर लिया करते थे, और मुझे देखते ही नहीं सोचा करते, ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगना आया होगा, और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज, और यदि तूने अपनी जान बचानी है तो शारदा नाम ले ले, और आज तू ब्राह्मणी है, कल न मृत्यु होकर तू हरिजना का पैदा होगी, तो फिर क्या कर लेगी, क्या तेरे हाथ में सब कुछ। तो वह काफी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका दस बहुत दुरुक्ति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता, ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया उसके पास, एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहां से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूं, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे कैसे आनी थी। उसने वह विवश होगी इस बात को सोचने पर, ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का, तो मैं परीक्षा लूंगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगी, फिर ना मानू किससे की। आप कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर, वो अंतर्यामी है और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में, जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रहे हैं। कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। आप आज के नहीं हो, 64 लाख से तो काशी में बने थे, उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यही धक्के खा रहे हो, नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक। अब कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे, शारदा के पास संदेशा गया कि यहां हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना, बहने न्योता दिया करा आपस में घरों में। अब उसने सोचा, उसने ठान लिया शारदा जी ने कि आज मैं जाऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के और परीक्षा करूंगी। शाम के समय परमात्मा बैठे सामने आसन पर, छोटा सा आंगन था।

आनंद की माँ आज दानक के पास कैसे आएगी? तू क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज? अब उसने तो वो अड्डा पड़दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही कि आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे और मैं स्वस्थ हो गई, चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मन हल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गई, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपका एक आपको एक सैंपल दिया मैंने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं, आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे। थे आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर काफी चोट लग गई, मांस फट गया, तो उसने उसको ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी, दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी, और आपके जीवन में आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था, सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक धानक जो लाए यानी सुदर से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुणात्मा हो, इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पहचाने। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि वो कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंज लेती, को पड़ोसन पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तो के सोची नू है नू है, वो कवाड़ बंद कर लेती भौंकण देने। ये जब कित गई थी, जब मैं पड़ी पड़ी कर आया करती, ये ब्राह्मणी बनकाएगी, ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी, ये तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए और ऐसे ऐसे सुखों को देखकर आसपास के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के शिष्य होने लगे। अब जैसे आप जी को कथा सुनाई थी, परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझा करते थे कि तुम अपने अपने सदग्रंथों से भी अपने इतिहास से भी परिचित नहीं हो और अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर हो, जिस कारण से तुम आपस में भी झगड़ते रहते हो, भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। तो इससे दुख मानकर काजियों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की थी, एक गऊ को कत्ल कर दिया था, गर्भवती थी, चार टुकड़े हो गए थे मां बेटे के, और कबीर परमेश्वर को शर्त रखी थी उनके सामने कि या तो तू इसको जीवित कर दे नहीं तेरा सिर काट देंगे, यदि तू परमात्मा है तो गाय को जीवित कर, बच्चे को जीवित कर। तो कबीर परमेश्वर जी ने उन दोनों थपकी मारी थी, वो बच्चा भी और गाय भी दोनों जीवित हो गई थी, और बच्चा लगा के गाय के नीचे दूध की बाल्टी ठोक दी थी। इस तरह की बहुत सी लीलाएं देखकर वहां उपस्थित श्रोता कई हजारों की संख्या में कबीर जी के शिष्य हुए थे। एक शेख तकी नाम का धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, उसको ईर्ष्या होगी कि तेरे नंबर कट गए, और सिकंदर लोधी तो कबीर जी को ज्यादा चाहने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए, उनमें से एक ये किया कि इसको सरसों के तेल का कढ़ाया भरके और उसको उबालेंगे और कबीर जी को उसमें डालेंगे, यदि अल्लाह होगा तो बच जाएगा और ना तो टंटा कट जाएगा। सिकंदर लोधी के सामने शर्त रखती कि तुम इसको भगवान कहता है, हजारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होकर आगे कि या तो यह परीक्षा हमें दे तो हम मानेंगे ये अल्लाह है। ऐसी परीक्षा ली गई, सरसों के तेल का कढ़ाया आधे से ऊपर करके

0: और चूल्हा बनाकर ईंटों का और नीचे मोटे मोटे लकड़ देकर भट्ठ बाड़ दिया और नो उबला तेल जैसे चाय उबला करे। वहां श्रोता कई हजारों की संख्या में श्रोता खड़े थे, वो दर्शक खड़े थे, कहने लगे उठा कर डालो कबीर जी को इस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में। परमात्मा बोले ये भी कष्ट ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूं। परमात्मा चलकर आराम से उसके वहां बैठ के जाके इतना शरीर अंदर है बाकी शेष बाहर है। अब तेल उबल रहा है, परमात्मा बैठे है जिडीज। अब शेख तकी वही खड़ा था, उतने सोचा था ही हो जाएगा काम इसका सारा। अब शेख तकी कहता है राजा को सिकंदर लोधी वही खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया तेल ठंडा कर दिया, उबलता उबलता दिखे ठंडा है ठंडा है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लू, देख लेता हूं ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात तो मत आइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जची, गुरु जी बैठे तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी। करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी, उंगली डाली जितनी उंगली डाली थी उतनी कटकी, इतना तेज इतना गर्म था। और सिकंदर लोधी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिटी उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्ष्यालु वो तो मान्य नहीं, लेकिन वहां कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे कई हजारों ने उपदेश दिया परमात्मा के शिष्य हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। 64 लाख शिष्य सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था, रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को एक केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शिष्य हो गए थे परमात्मा। पुणात्माओं हम भगवान को पहचान नहीं सके, उसमें हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया अपने मकान में बैठी बैठी ने, झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था, रात का सत्संग आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तन तो बहुत जुलम कर दिए, मनुष्य जीवन मिला किस लिए था, भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे, उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया। और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई, वहां जाकर कहा परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है। कबीर साहब ने कहा हां बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो उद्धार हो सकता है, कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे हैं, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, सप्रस कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो ठीक हो जाओ। उस लड़की को तो ज्यादा लगन लगी, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहां सत्संग होता था वहां वो वैश्या आती थी वो लड़की, और वहां भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भैया तो बात बिगड़गी, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम आता अगर तू बेइज्जती करावेगी, ये है रो है। वो फिर कैसे हटे, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहां जाऊं, रोने लगी बुरी तरह। कहा बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरु जी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी हो वै संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कह विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूं, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओ है दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहां तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहां बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाती। अब वहां आसपास के व्यक्ति जाकर उनके चेलन बताते, देखो सारे गुरु वैसा के घर बैठी है, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर और ज्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्यों होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि लायक एक कब सुर सुर सुर कैला सुसरी कह दू। उन्होंने एक हाथी किराए पर ले लिया, अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज्यादातर इकट्ठी रहते थे, रविदास जी को परमात्मा पर ज्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर और उस लड़की से कहा, बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तुम। वो लड़की कहने लगी, पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ के कबीर जी पाछे बिठा ली वह लड़की वैश्या, जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गया हाथी के, और लड़की के ऐसे कंधे पर हाथ रख के, और वो गंगा जल पीवा जैसे शराब पिया करता, और नो झूठ रे परमात्मा, और हाथी स्टार्ट कर दिया मेन बाजार में काट दिया। अब जुल सा भी देख, यू कौन है, जुलम कर दिए, बस सरेआम वैश्यावर्ती शुरू होगी, कौन है यो काशी, वो कबीर है दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुला उनके दूसरे दुकानदार के, आ जा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरु जी के करतूत। अब वो देखे चेला, मैं तो एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता, दूसरे को लाए बुला के, बोला मुझे तो रघुवीर ले गया था एक दिन, मैं तो कोनी वहां नहीं जाता था, छोड़ रखा मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझ। अब सब नौके तो बड़ुआ है नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीब दास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो बड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, इनमें यदि सस है तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख सस परमात्मा से दूर हो गए। उनमें से दो अर्जुन और सर्जुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे, उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1, 2, 20, 30, 50, 100, 1000 लाख आदमी एक बात कहे, करे तो हम सच्ची कहे हमने आख्या देखा, वो भी डगमग हो गए। कहने लगे तू देख लिया श्याम ने, उस वैश्या के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों श्याम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वरह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सर्जन भी नो कहने लगे गुरु जी यहां ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा अर्जुन सर्जुन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लागे, भाग जाओ यहां से, सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अर्जुन सर्जुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत, ऊंच नीच में हम रहे ये हार्ड चांद की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने। अरे बोले आदमी हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हार्ड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा कल्याण करवा लो, चुप करके। फिर उनके बात समझ मांगी तुमने तो गलत कर दिया, फिर चरण पकड़ लिए प्रभु हमें अक्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए, कि अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गए, हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य उनमें लगेगा, बुरी तरह रोने लगे, टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में जमीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक कर दुखी हो लिए, सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे, तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊंगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊंगा, उसे तुम नाम लेना जो कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया, उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे। लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय, उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है, आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो, आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना बने। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आओगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक, तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का, तो इसमें परमात्मा को समझो पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं यह आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है यह आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लिए

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

बख्शिश करती है। ए मनुख तू चेते कर, माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर, शेर तले पांव ऊपरे, वसंदो कोथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये, उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर, जदों तू पुठा लटकिया होया सी, ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सै, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी, उस वेले तू अरदास करदा सै, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ, मैं तेरा सिमरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू कहा सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भूल गया वह दे, पै गया हनेरे, ओए सुन मन गाफल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www

संत जनाम हर जस गायो, हाँ कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

0: तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम से आया गए मसकत काल नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम से आया गए मसकत काल नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: श्री वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ महाराज जिन वड़ियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है

छागल काट रहे हो ब्यापे, ब्यापत देखिया जागत, जाने कौन तेरी गात, सर्ब की रक्षा करा आपे हर पाते।

0: सदा मुक्ते। प्रभ दा तो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जे लग पाजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत तेहो मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: कलश मंदर पै रूप प्रगट हर नाम उदारन बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन। निर्मल भेख पार तास बिन अवर न कोई मन बच जन जान्यो भयो तह संसर सोई। तरन गगन नव खंड मह जो तह सब रूपे रहो पर पन मथुरा कछ पेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर।
2: काची दे मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी पावत प्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जो बन रूप माया मद माता बिचरत बिकला बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा जह मीठी जी माए हतानी। बलबंच शाप कर तू पावा पेश तो सुन तो प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सोच नासत आयो शरण जी के दानी। कारण करण समर्थ श्री धर राख लेहो नानक के स्वामी।
3: अगम अनंत अनादि आद जिस कोई न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस बेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गरण समर्थ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसन

ब्रह्मांड शिव शांत मुनि सर रस करस ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनोख देव दानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे

0: मोह परम पैपुले सुत दारा से
1: प्रीत लगाए
0: एक उत्तम पंथ सुनियो
1: गुर संगत
0: तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास।

अहल सुसहज सुवाई दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह माल जनम जनम दी कटिया सजन सच्चा पात साह सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सजन सच्चा पात साह सिर साहा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा

0: जाए।
1: जन्म सुख तोर हार लिखिया, इन्ना सतगुर मिलिया राम राज अग्यार अंधेरा कटिया।

0: तातारा जूतो लिए ने सो गौरा हो अपराधी गुणा ने वे जोहंता मेरे गा शीश ने वह क्या थी जार देख सुध जाए महला पहला
1: पाठ पुस्तक संध्या वादन सिर्फ उस भगत समाधन गोपन सारंग कृपा त्याल विचारंग गल माला तिलक लीला टंगो धोती बस पाठ।

0: मुखर दा शुद्ध है, हर भगत हर जी जय।
1: श्लोक महला पहला, गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाय, तोती टिका तै जप माली तान मिले छा खाय, अंतर पूजा पड़क दे बस निंतर का पाय, छोटी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
0: मानस खाने करे निवाय छुरी बगाय, तिन गल ताक तिन घर ब्राह्मण पूरे।

0: करे कढ़ेरियां खसम ना पाए सार, आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान, नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो
1: जो जी होए सो गुए मुंह का कहया वाओ बीजे बिक मंगे मृत वेखो नि आओ नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जिहा जाने तिहो वरते वेखो को निरजास वसम दरवसम आवे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कुमाने कूड़ो होवे नानक सिख विकास महला दूजा
0: नाल आने दोस्ती वडा रुस्यो ने पानी अंदर लीक जो तुस्ता खाओ न थे कोई आना करे कम आन न सके रास जे इक अद चंगी करे
1: दूजी भी वे रास पौड़ी चक लगे चक्री।

हर कण हारा भला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक सकर्मा साहिब तू फै जो

पौड़ी बड़ी हवड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरा वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद बधाई तुद कर मान।

सलो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरी आईया वाटे धर्म हजू।

0: गए मसकत काल, नारक ते मुख उजले केती छुटी नाल।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।
2: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गोर नानक लई त्याए, फिर अंगद गोर ते अमरदास। राम दास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही। देख के अण निठ कीता तिना प्यारियां, सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर।

एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर वरन जात अर पात नहिं जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जो कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गण जाय त्रिपवन महीप सुर नार असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा विख्याता

जाकै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जन्म मरण भय दुखी। चार पदार्थ नव निध पावै, बहुर ना तृष्णा भुखी। जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास त्यावहु ठाकुर कौ। मान तान जियरे मुखी, शांत पावह होवह मन शीतल। अगन न अंतर तुखी, गुर नानक कौ प्रभु दिखाया।

प्रीतम आपण तान मान होए निहाल जागोर देखा सामने सो कहो टल गोर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवा सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पाते साह सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सत

हाउ कुर्बान जाओ, हाउ कुर्बान जाओ तिना का लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

नजर विच लोक परलोक दे सुख हन जिन्हां उपर नजर कर दिती भिखारी ते राज करावे जिदे उपर नजर आप दी हो गई ओ निहालो निहाल हो गया जे कौड़े रिठे ते नजर पै गई ता कौड़ा रीठा शुहारे वर्गा मिठा हो गया जे सज्जन ठग ते नजर पै गई तेरी ता सज्जन ठग नहीं रहा हुन संत बन गया सास ग्रास सिमरन करन वाला हो गया तेरी नजर दे तेरी नजर पै गई एक कोड़ी दे उपर ते उदे तन दा रोगी नहीं दूर होया उनू मनोवी अरोग कर देता हे गुरु नानक तेरी नजर विच अमृत है जिदे वल गुरु नानक ने वेख लिया उदे ते मेरा दा मी वस गया इसलिए जिथे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary।

मनाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज, अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

0: मालवा टायर्स 403-899 1985 या फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज का पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: अंग राग का नाम है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिहड़े राग आए ने उन्हां रागां दे विचों एक राग का नाम है तिलंग राग। उस तिलंग राग दे विच पातशाह महला पहला गुरु जोत अकाल पुरख परमेश्वर जी गुरु नानक साहिब जी की जोत दे विच तीजे घर दे विच ए अगे उपदेश करदे हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुरां ने इस मंगल दे विच संपूर्ण सिद्धांत दस दिता सिखी दा। जे आपां कई बारी आपां कहने भी शुरू कित्थों करिए ते समझ किवें आवे भी सिखी दा मकसद की है, असी पहुंचना कित्थे है ते पहुंचना किवें है, ते गुरु साहब ने दोवें गल्लां दो लफ्जां विच ही दस दित्तियां। महाराज कहिंदे पहुंचना तू एक ओंकार तक। एक ओंकार एक धुनि रूप बन के सारे थावां ते वरत रहा है। ये जिहड़ा एक ओंकार शब्द है ना, इहदा मतलब है ब्रह्मांड दे विच गूंज रही एक खास तरह की धुनि जो साडे अंदर भी है जो बाहर भी है जो सारे ब्रह्मांड नूं चला रही है जो सारी सृष्टि नूं कंट्रोल कर रही है वो एक ओंकार की धुन है। पातशाह कहिंदे उहदे तक जाना है, ओही दरवाजा है, उहदे विचों लंघ के तू परमात्मा तक जा सकना है। पर नाल सचेत कर दिता कि अपने केवल यतन दे नाल नहीं सतगुर प्रसाद फिर जिन्हों दसिया भी एक ओंकार तक ते पहुंचना है ते पातशाह पहुंचिए किवें केड़ा तरीका है। कहन लगे सतगुर प्रसाद, सतगुर सच्चे गुरु दे प्रसाद कृपा द्वारा बख्शिश द्वारा रहमत द्वारा। जदों गुरु का सिख गुरु की हजूरी विच सिखी दी कलना करदा है गुरु दे हुक्म विच तुरदा है करद्या करद्या करद्या एक दिन उहदे उत्ते गुरु की रहमत गुरु की बख्शिश का मीह पैंदा बारिश पैंदी है ते उस रहमत की घड़ी दे विच उस एक ओंकार दे नाल गुरु के सिख की सुरत जुड़ जाती है।
1: तन माया पाहिया प्यारे।
0: पातशाह नू किसे ने सवाल किया भी पातशाह तुहाडे घर दे विच मैं बड़े चिर दा लगा होया, मैं बड़े पाठ किते ने, मैं बड़ी कोशिश करना, जो तुसी कहा मैं अपने वालों कोशिश तो कर रहा पर अंदर कोई रंग नहीं लगा, अंदर सुका खुशकी है, अंदर कुछ लगता नहीं। ये तो एक बाहरी मनौत के आधार से गुरु साहब ने संगत बना दी है भी सिख टुटे ना, जे अंदरों नाम ही कुछ मिले तो एक दूजे वालों वेख के तुरिया रहे, क्योंकि महाराज नूं पता सी भी जिहड़े राह ते मैं अपने गुरु सिख नूं तोरन लगा ये कोई इन्नी काली वाला काम है नहीं, इहदे ते बड़ा चिर लग सकता है, बड़ा समा लग सकता है, थोड़ा भी लग सकता, ज्यादा भी लग सकता, ते ये किते अक के छड़ के ना बह जाए। वैसे आपां कई बारी छड़ ही देने तकरीबन भी नहीं कुछ होया, दो कु दिन जपजी साहब का पाठ करके कहिंदे कुछ नहीं होया, एडा वड्डा कम साध संगत जी किवें इन्नी वड्डी होवे। एक दो दिन होए बचन की आप जो सांझ करा, एक सिंह अमृतधारी कहिंदा मैं तीन चार साल तो नितनेम कर रहा ते मैनू कहिंदा है भाई कुछ अंदर रंग लगा है नहीं, कुछ बनिया नहीं। उहदे पिछे एक दस पंद्रह पिंडां दा मालक सोसायटियां दा कोऑपरेटिव बैंक दा एक सैकटरी खलोते सन ते उहनां नूं मैं सद लिया। मैं कहा भाई तुसीं दस पिंडां दे विच सैकटरी दा काम करदे हो ते बनन लग्या किन्ने साल लगे ने, कहिण लगा 20 साल मैं पढ़ाई कीती है, 20 साल काम कीता। मैं क्या 20 साल रोज किन्ना करदे सी, कहिंदे 8-10 घंटे रोज पढ़दा सी ते 20 साल पढ़िया ते तां जा के ये नौकरी मिली है। ते मैं उहनूं कहा भी सिंह साहब जी ये ते अजे 10 पिंडां दे विच नौकरी करदे ते 20 साल ते इहनां नूं लग गए ते रोज 10-10 घंटे लाए ते तुसीं तां जिहड़ी चीज़ नूं भालदे हो ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ हर नाम मन भिन्ना बड़ी वड्डी बख्शिश है, बड़ी वड्डी कृपा है। इस करके इहदे उत्ते इंतजारी बेकरारी दोवें चीजा कठियां चाहीदियां ने। नौ निशानी आशकारा ऐ बिसर रंग जरद आहे शरद चशम तर, यह नौ निशानियां दसियां ने साधकां ने नाम जपण वालियां दियां। नौ निशानी आशकारा ऐ बिसर रंग जरद, उन्हां दा प्रेम दे विच रंगे होण करके रंग पीला पै जांदा। आहे शरद, शरद ठंडी, उन्हूं ठंडे सुवास आउंदे ने, ठंडे हौके आउंदे ने रब दे प्यार दे विच। चशम तर, चशम मैने अख, उहदियां अखां तर बतर रहिंदियां, पाणी भरिया रहिंदा है। इस तों अगे कहिंदे ने इंतजारी बेकरारी ख्वाबे हराम, सदा इंतजार लगी रहिंदी है। जिधरों कोई आवाज आउंदी है सोचदा परमेशर आ रहा, रब आ रहा, गुरु आ रहा। इंतजारी, इंतजार बड़ी है। बेकरारी, दो चीजा कठियां, बेकरारी का मतलब है अंदर काल बड़ी पई है भी कदों प्राप्ति होगी, कदों बख्शिश होगी। जदों ये दो चीजा कठिया हो जाएं ने धर्म के बंदा परिपक् हो जाता है, नहीं तो कितने भी डोल सकता। एक तो इंतजार लंबी चाहिए है, तो एक साथ संगत जी अंदर बेकरारी, इन्हें भी इंतजार का मतलब है बंदा सौ ही जाए, नहीं। आ बड़े सोहने बचन किसे कहे भी जदों गुरु नानक साहब वेई नदी दे विच जदों परत के ना दिसे दो तीन दिन, तो भाई मरदाना जी उन्हां दे वस्त्र उन्हां नूं फड़ा के गए सन गुरु नानक साहब जी, तो जदों वस्त्र फड़ा के नदी विच उतरे सन तो कहा सी मरदानिया तू इत्थे खलो मैं इशनान करके आ जाना। गए परत के पता नहीं लगा कि गुरु का कौतक है, गुरु निराकार दे देश विच गए ने, की कौतक कीता है। मरदाना उत्थे खलोता, लोकी आए, रौला पै गया। नगर वालिया ने कहा कि नानक शायद पानी दे विच बह गए ने। एक दिन निकल गया, मरदाना उत्थे ही खड़े रहे। दूजा दिन निकल गया, मरदाना उत्थे ही खड़े रहे। तीजा दिन आया तो फिर भी उत्थे ही खलोते ने कपड़े लैके। तो कोई सज्जन कोलों लंघिया, उन्हें कहा मरदानिया तेरा यार तेरा दोस्त, एवें लोकी कहिंदे सी, तेरा दोस्त नानक लगदा हुण परत के नहीं आउंदा, तू अजे भी कपड़े फड़ के खलोता, तीन दिन हो गए घर चला जा, उन्हें नहीं आउणा। मरदाने का जवाब सी ओ सिक्खी दे नाल परिपूर्ण गुन्निया होया जवाब सी। भाई मरदाने ने कहा तू तिना दिन की गल करना है, जे तीन युग भी बीत जाते मैं उड़ीक करांगा गुरु नानक दी, इत्थे कपड़े फड़ के खड़ा रहांगा। इन्नी उड़ीक चाहिए सिख दे विच, इन्ना सबर चाहिदा, इन्ना प्यार चाहिदा। पर इत्थे महाराज कहिंदे किसी ने पुछया कि प्राप्ति नहीं हुंदी, ते महाराज जवाब देंदे ने इहो तन माया पाहिया प्यारे। हे भाई, ये तां इस शरीर रूपी कपड़े नू माया दी भा चढ़ी हुई है। भा चढ़ाउणी मतलब यानी कि असर प्रभाव, जिवें किसी चीज़ की भा चढ़ाई जांदी है ना, जिवें जिवें लोहे नू गर्म करके उन्हू पानी विच पाइए तो होर तिखा हो जांदा है, फिर गर्म करके फिर पानी विच पाइए तो वह होर तिखा हो जांदा है, फिर गर्म करके एवें वार वार माया दी इनू भा चढ़ी हुई है मन नू, इस तन नू। ए तन माया पाहिया प्यारे, हे प्यारे तू कहिंदा ते है वे मैनू रब दे घर विच अगे पंध नहीं लभदा पिया, पर तेरा ए जीवन रूपी चोला जिहड़ा शरीर है ए ते माया दे विच रंगिया होया है।
1: नीतड़ा लब रंगाए,
0: महाराज कहिंदे हे भाई पुछण वालिया ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਤੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਤੜਾ, ਲੀਤੜਾ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਤੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਇਹ ਲੀਤੜਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ, ਲੱਭ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਬੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਭੋਗਣ ਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੋਭ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1: ਮੇਰਾ ਕੰਚਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ।
0: ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੰਤ, ਕੰਤ ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚੋਲੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੂ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਧੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ।
1: ਧਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ,
0: ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ। ਇਵੇਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

महाराज कहिंदे एक ते हुंदा जदों रंग लग जाए उदों नाम जपना ओ तां बड़े चिर बाद आउंदा है। इत्थे संघर्ष दा जिक्र है इस रहाओ दी धुप दे विच वे इधर दुनिया का रंग भी लगा होया ते उधर परमात्मा का भी प्यार लगा होया। दोवें फौजां बराबर ते खलोतियां ने, कभी इधर मन जुड़ जांदा है कभी उधर संसार वल फिर भटक जांदा, जिंदगी जिहड़ी मन उधर नूं चला जांदा। दोवां पासे मन है। इस अवस्था दे विच जिथे साध संगत जी मन लिबड़िया होया है, भरिया होया है, इस अवस्था दे विच विरले ही सिख ने गुरु के प्यारे जिहड़े परवाह नहीं करदे, एवें दी हालत दे विच भी नाम जपदे ने। ते पातशाह कहिंदे मैं उहनां तों कुरबान जांदा। कई बार असीं कहिंदे आ रस नहीं आउंदा ते नाम जपणे आ ते रस नहीं आउंदा। साध संगत जी महाराज कहिंदे जिस सिख नूं रस नहीं आउंदा ते उह फिर भी जपदा, मैं उहदे तों कुरबान जांदा, क्योंकि रस ते आ गया ते फिर ते लालच हो गया ना, उहदे पिछे कोई चीज जुड़ी है वी रस आवे ते तां जपांगे, आनंद आवे ते तां जपांगे। इस करके महाराज कहिंदे कुरबान जाइए उहनां तों, मैं उहनां तों सदके जाना जिहड़े हे मेहरबान मेहरबान परमात्मा नूं कहा है, हे सच्चे पातशाह जी मैं उहनां तों कुरबान जाना, उहनां तों सदके बलहार।

तो कुर्बान जाता हां जिहड़े तेरा नाम लेंदे हन इस हालात दे विच इस अवस्था दे विच जदों जिंदगी विकारां दे विच फसी हुई है जदों संसार दीयां इच्छावां पिछे नूं खिचदियां ने ओ जोधे ओ सूरमे इहदी परवाह नहीं करदे इहदे विच ही ओ इह संघर्ष करी जांदे ने इह युद्ध करी जांदे ने एक बाहरला युद्ध है एक अंदरला युद्ध है मन विच जिन्ने मर्जी झखड़ चुल्लण पए मन जो मर्जी कही जाए नितनेम नहीं सिख ने कदी छड़ना नितनेम ना छड़ेगा तो एक दिन यह पासा भारी हो जाएगा जिवें एक पल्ले दे विच एक मन भार पिया होवे ते दूजे पल्ले विच तुसी भावें एक पाई ही पाउंदे हो रोज पाइया पाइया थोड़ा थोड़ा अद्धा किलो किलो पाउंदे रहो जे तां पाउंदे रहे एक दिन दूजा छाबा चुकिया जाना इधरला भारी हो जाना तो जे हुण पाया ही ना तो नितनेम की है थोड़े थोड़े तुसी भार पाई चलो ता कि यह पला भरिया जाए नितनेम गुरु का सिख ना छड़े दोवें टाइम का चौंकड़ा ना छड़े तो एक दिन जरूर आउंदा उहदा पलड़ा भरिया जांदा है उहदा घर भरिया जांदा है इस करके कहिंदे कुरबान जाइए उहनां तों सच्चे पातशाह जी जिहड़े

पातशाह ने बड़े तरीके नाल गल कीती है। कहन लगे जिहड़े होण वाले सिख ने ना, मैं कल्ला इन्हां दे कुरबान नहीं जांदा, जिहड़े आउण वाले समय विच होणगे उन्हां दे वी तिन्हां कहि हो सद कुरबाना जाऊं। सद मतलब जदों तक धरती रहेगी उन्हां सारिआं तों मैं, आपां भागां वाले हां, भागशील हां, असीं सोचने हां पता नहीं गुरु साहब नूं कोई पता भी लगदा कि नहीं, असीं कोई सिखी कमाउने हां। पातशाह तो इतने बोल के कह रहे हैं अज के श्री मुख वाक दे विच भी, आ सिखा तू बड़ी दूरों तुर के आया दर्शन करने वास्ते हरिमंदर साहब दे, मैं कुरबान जाना तेरे तो, मैं सदके जाना, पर पता तां लगेगा जो बाणी दी विचार सुनांगे, तां पता लगेगा भी कल्ले आपां नहीं अरदासा करदे, गुरु साहब भी कुछ कह रहे हैं। वो कहिंदे मैं सदा ही तेरे तो

0: प्यारे गुरु के सिखा जे इस काया नू रंगण रंगण मैंने कपड़े रंगण वाला घड़ा बिलारी जिदे विच चुनिया आदि रंग लै हुण होर तरीके आ गए रंग चाढ़न दे पहला घड़िया दे विच ही रंग चाढ़दे सी इहनू कहिंदे रंगण नंगे दे नाल है इह पढ़न लग्या जदों पाठ करना है इह गग्गा नहीं है इह गंगा है काया नंगण जे थी है प्यारे जे इस शरीर नू जीवन नू रंगण वाला घड़ा बना लईए
1: नाम मजीठ
0: इहदे विच नाम दा मजीठ रंग पाईए मजीठ मैंने पक्का रंग पहला दो तरह के रंग होंदे सी एक कसुंबे दा ते एक मजीठ दा कहिंदे नाम दा गुरु दे भरोसे दा गुरु दे प्यार दा पक्का रंग नितनेम दा गुरमत दा गुरु की बाणी दी विचार ते कीर्तन दा जे पक्का रंग इस शरीर रूपी घड़े दे विच पा देईए
1: रंगण वाला जी रंगण साहिब
0: फिर इत्थे पहला कहा भी आप पा ते फिर कह रंगण वाला हुण रंगण वाले दा कम शुरू हो गया पहला सिख ने जपना है पाउना है सुनना है विचार करनी है गुरबाणी दी विचार करनी फिर उहदे तो बाद गुरु का कार्य शुरू हो गया फिर गुरु साहब ने रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा साहिब जिहड़ा है जे किसे गुरु के सिख नूं इह रंग चाढ़ देंदा है
1: ऐसा रंग ना दीठ
0: पातशाह कहिंदे हे दुनिया दे लोगो तुसी दुनिया विच बड़े बड़े वड्डे रंग वेखे ने पर जिन्हों गुरु ने नाम का रंग चाड़ दिता उहदे नाल दा रंग किसे कोल नहीं हुंदा एवें दा रंग है ते जदों किसे दे उत्ते किरपा हुंदी है ना बख्शिश हुंदी है ते उहदे जीवन दे विच इह रंग चढ़दा लाल ते फिर उहनू कोलों कई पुछदे ने बई इह रंग तैनूं किवें चढ़िया किवें होया महाराज बाणी विच कहिंदे ने पढ़ो सारे गज के कवन

0: पर नितनेम का जिक्र भाई गुरदास जी ने किया। वो कहते अमृत वेले जा पुचारा, जपजी साहब पढ़ते हैं सिख अमृत वेले। तीजी चीज उन्होंने कही है ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, सिख आपस में ज्ञान गोष्ठी दियां गल्लां करते हैं। यह तीजी असी विदा कर दी कौम विचों कढ़ दी है, गोष्ठी नहीं साढ़े को रही। जे कि सैमीनार हो भी रहे हैं तो वह पढ़े लिखे वड्डे पद्धर यूनिवर्सिटी के विद्वान ने, आम बंदे उन्हां दी समझ नहीं आती। सिखां नूं निजी सादी डिस्कशन चाहिए, डायलाग चाहिए, पता लगेगा सिखी की है। वह इन्ने महंगे शब्द नहीं समझते, वह सादियां गल्लां भालदे ने। इस करके ये सारे बंदे जिहड़े आए सी ये गोष्ठी करके गए ने गुरु अमरदास जी नाल। गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन
1: प्रथम आए कुल खेत गुरु सतगुर पुरब होया।
0: प्रथम कुल खेत कुरक्षेत्र आए ते इत्थे गुरपुरब होया कुरक्षेत्र दे विच। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह ने सारियां गल्लां ते मोहर लाई है। इत्थे दस पुरब दशहरा जिहड़ा सी ओह नहीं होया, उन्हां दे दस पुरब नहीं मनाए सनातन दे, गुरपुरब होया इन्हां तीर्थां ते। कई कहिंदे अगे एक पंक्ति हुण समा नहीं, मैं अर्थ उहदे वी करना चाहुंदा सी वी सतगुर कुल खेत नहावन गया। वह एक कहावत है, जिवें तुसीं इत्थे आए हो ना, इत्थे कई बंदे आए ने इधरों अमेरिका विचों कनेडा विचों कई गोरे भी आए ने। वो आए तो वेखण वास्ते भी हरिमंदर साहब किवें दा, पर उन्हां नूं वी लोकी कहणगे भी ये अमृतसर नहाउण आए हुए ने। एक कहावत सी कुरक्षेत्र नहाउणा, हरिद्वार नहाना, गंगा ते नहाना। गुरु साहब किसी तीर्थ ते नहाउण नहीं गए, उन्होंने शब्द के इशनान की गल की है, नाम ते ज्ञान के इशनान की गल की है। ये चीजा साढ़े प्रतख होनिया चाहिए ने। सो दो मिनट अपने को बचे ने, चौंकड़ा ला के गुरमंत्र गुरु शब्द के भी सांझ पाइए। सारे करो कृपा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपे

0: गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तले, उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम, ग्रीब जो सुमरह सिद्ध होई गण नायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा जावे शेष 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी, 33 कोटि अधारा जावे शेष 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी, कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जा मैं गुलाम, कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोहा जाऊं, तो करो तो बावड़ू

जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखू रोए, चरणों ऊपर शीस धरू, कहूं जो कहनी हो, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। आवे गुण किए तो बहुत किए,

0: मारू, अब गुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत एक पूत हूं, बोर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नख से कबरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सबर, सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बैजांग जो तुम न पकड़ोगे बां, हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का सूजत और निठोरी। पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हम सबके उत्पत्ति करता है। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी यहां सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में, हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वर्द अवस्था नहीं थी, वो अनामय लोक है। अनामय का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनामय का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण, हमने वहां एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहां काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, परवर्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के, और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था, वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब परवर्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते, और न ही अर्जुन को यह पूछने की आवश्यकता पड़ती, आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं, और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, आप उन्हें भी खा रहे हो, कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब परिवर्त हुआ हूं, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है, और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये सथूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं, कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सभा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये सथूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मानव शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर, एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है, वो सबतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है, और सभी प्राणियों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो वहां प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे एक खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं, और उन वो मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पीड़ा बहुत होती है, सब तोबा बोल जाते हैं, उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, राम है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म, और इसी को सर्वपुरुष भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर्वपुरुष, सर्वपुरुष ये खुद है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, ये काल भी कहलाता है, और एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, 7 संख नील पदम संख, वो अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, अविनाशी, लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी आयु सीमा है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, और साथ में यह भी निर्णय दिया है कि इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो अमर है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी अच्छा भगवान। इसका मतलब है कि दोनों अच्छे नहीं है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी, इसलिए उत्तम पुरुष अन्य बताया है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब का धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहां ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सर्वपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत, मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोक वेद, लोक वेद माने दंत कथा जो वास्तविक ना हो, जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वा कहा करते थे, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नाशवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल, ये सर पुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्मा, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहां है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चीटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक। लेकिन यहां काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया, यहां जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्मा, जब तक आपके घर पर बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है, और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई, और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे, जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते, सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा, एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने, हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सूअर बना दिए और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे पांचों वेद, इस काल भगवान ने उनमें से चार रख लिए, एक नष्ट कर दिया, पांचवा वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम यहां कैसे फंसे हैं और वापस स्वलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई योगाभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, उनके जानने से तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो ज्ञान इस काल ने छुपा दिया और मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि तू किसी संतों से पूछ ले, मैं नहीं जानता। और जब परमात्मा आते हैं संत रूप में, वो मिसगाइड करता है सबको कि झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से, लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई
3: ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ 403-404-3500 ਯਾਨੀ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਇਰਸ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਟਾਇਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ 403-899-1985 ਜਾਂ ਫਿਰ 403-899-1984 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 8616, 44th ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ।
4: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਆਪ ਨਸ਼ਾ, ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਹ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓਂ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਤੋ ਅਵਸ਼ਯ ਪੜ੍ਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਅਨਮੋਲ ਪੁਸਤਕੇ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਵ ਗੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਯੇ ਸਭੀ ਪੁਸਤਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ ਵ ਅਨਯ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਭੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚੀ ਭਕਤੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਲਾਖੋਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਨਹੇ ਪੜ੍ਹਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਨਾਡਾ ਮੇਂ ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਃਸ਼ੁਲਕ ਮੰਗਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਜ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jagatgururampalji.org ਪਰ ਜਾਏ ਜਾਂ 3065818061 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
3: ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 FM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

0: गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सत साहिब। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोक पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परम धाम नहीं है, वो भी विनाश में आता है। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम बस्वांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर। अब इन ऋषि महर्षियों ने यहां से ओम नाम तो सिलेक्ट कर लिया कि परमात्मा का केवल एक ओम मंत्र है, उसका काम करते करते विशेष कसक के साथ मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप कीजिए और अपना मूल कर्तव्य जानकर कीजिए, कसक के साथ कीजिए, जिससे क्या होगा कि जब शरीर छूट कर जाएगा, जब तेरा अंत होगा, भस्मांतम शरीरम शरीर भस्म होगा, तेरे शरीर का अंत होगा, देहांत होगा, उस समय तू उससे उस अमृतव को प्राप्त करेगा जो ओम नाम के जाप से तुझे प्राप्त हो सकता है। वो कितना हो सकता है उसकी भक्ति और साधना पर डिपेंड करता है, तो उसके आधार से वो हो सकता है एक कल्प युग तक भी रह सकता है, हो सकता है एक महाकल्प तक भी रह सकता है। महाकल्प होता है ब्रह्मा जी की एक आयु, ब्रह्मा जी की मृत्यु को महाकल्प कहते हैं, और 1000 जो उसका दिन है, 1000 की रात्रि, इसको कल्प बोलते हैं। 1000 चतुर्युग की जो, और इतने ही का दिन इतनी ही रात्रि, तो इसको एक कल्प बोलते हैं, और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प कहते हैं। तो वहां जितने जिसने साधना की है ओम नाम के जाप का, जितने अधिक मंत्र किए हैं, कोई कम किए हैं, तो उसी आधार से कोई कितने वर्ष तक, कोई कितने वर्ष तक रह करके फिर पुनर्जन्म में अवश्य आते हैं। तो ऋषि महर्षियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 15 में ये तो ले लिया कि ओम नाम है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी 40वें अध्याय में भी ही, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 और 13 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है वेद ज्ञानदाता ने कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे श्री राम श्री कृष्ण और श्री परशुराम आदि के रूप में, और कोई असंभवात यानी कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, कोई संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है, लेकिन इसकी विशेष जानकारी वास्तविक जानकारी तो धीराणाम, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका ज्ञान टिकाऊ है, धीर पुरुष, वही बता सकते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। ये सिलेबस है जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है, आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो लेक्चरर अलग होते हैं, उनका सिलेबस भी अलग भिन्न होता है। तो इस प्रकार वो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए वेदों में भी कहा है, और यही वेद चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में मैं अपरिचित हूं, गीता ज्ञानदाता कहते, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्म ने मुखे, जो परमेश्वर की वाणी है उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, वो उसमें जो ज्ञान है कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। वो परमात्म तत्व गीता ज्ञानदाता से अन्य है जिससे वो स्वयं अपरिचित है। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई इन ऋषि महर्षियों को, और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे, और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से, और हठ योग किया, एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहां से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहां से आटिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका, तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लगी, और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लगी, और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, अन्य सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पा गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने सातों सागरों को एक ही घूंट में, समुद्रों को पी लिया, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया, लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं, गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है, और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ, अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है, और मेरी प्राप्ति यानी मेरे इस रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप किए जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बना डाले। परमात्मा निराकार है और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये परमात्मा का साकार रूप बता दी। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर बढ़ा पड़ा था। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इन्हें मिला नहीं, वो इनको मिले नहीं और मिले तो इन्होंने माना नहीं। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ये हमारे सबके मालिक हैं और यही यहां हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम यहां किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे और तुम्हें मूर्ख बना रखा है। ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता है ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी। और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी, फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है और वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान उन्हीं की अमृतवाणी में आपको सुनाया जाता है, जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो पांचवा वेद है, उसके आधार से परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम जो साधनाएं करते हो, जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा स्वयं आए, कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं और पूरे युग में सतसुकृत नाम के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि के नाम से। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है और द्वापर युग में करुणा में नाम से, और कलियुग के अंदर उन कबीर नाम से, उनके वास्तविक नाम से ही वो प्रकट होते हैं। यही नाम रखवाते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब। अपुनात्मा परमात्मा वैसे भी अन्य कई रूपों में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर देव जो उनका नाम है ये इस युग में प्रसिद्ध रहेगा। इसके इक्विवेलेंट और कोई प्रसिद्धि परमात्मा की नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान के प्रचार बहुत कुछ होंगे, उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का नाम कबीर देव ही चलेगा कलयुग। तो चारों युगों में आकर के परमेश्वर ने ज्ञान तो हमें दिया, लेकिन इस काल ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया। अब वो परमेश्वर अपने सतलोक शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सनातन परम धाम से चलकर आते हैं। उस सनातन परम धाम में, सतलोक में कोई कष्ट प्राणी को नहीं होता, वहां जरा और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु, वहां जरा मरण नहीं है, वहां कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्वसुख होंगे। उसका भेद काल ने छुपा दिया और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है, परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मेरा नाम कबीर है, कबीर देव जो वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो वो मैं ही हूँ, और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाहु अकबर कबीरा कबीरा पढ़ते हो वो भी मैं ही हूँ, मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं, और प्रत्येक ने शास्त्र विर साधना करके, कंप्लीट साधना ना मिलने से, पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, सनातन परमधाम से चलकर आते हैं, जहां जाने के बाद प्राणी को फिर कष्ट नहीं होता। इसी का समर्थन गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने विषय में कहता अर्जुन मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा, युद्ध भी कर मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्परम से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। अब अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्परम, वो तत्परम क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन कहते हैं सर्व पुरुष को। दूसरे शब्दों में हम कहे कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्म लोक में मैं रहता हूं, और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक, तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की, जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है। तो उस सर्व ब्रह्म का यानी डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है।

कि 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक, इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीताजी दहन विराट के श्लोक नंबर 16। यहां अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अनुवाद उन्होंने वहां कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का अर्थ जानना होता है, जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया, विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्म लोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, चौथे अध्याय के पांचवें और नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया इसने, और दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहां आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया, हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे, हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे और भगवान को पहचान रहे। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना मोक्ष करना बहुत आसान है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, के समरण का, उसके पाने का, तीन मंत्र का जाप है ओम तत् सत। ओम तो सर्वपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको दो तीन जड़ियों में मिला दिया जाए उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है, वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक अर्थात एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम अनुतमाम मैंने कति अश्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे। लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे, मेरे वाली घटिया। इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है, तरह गजब भैयो। अरे बेड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुतम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता, उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है।

0: उस सचिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाणी का, ये तीन मंत्र का जाप है। आए है, ये तीन मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा, यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि वशदास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी शरफरे से लेकर के, इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा आठवें अध्याय के पांच और सात में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा श्रवण कर। आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे, मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है एक अक्षर का। और फिर सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का मार्ग है, ये तत् और सत्य गुप्त है, इससे ये काल परिचित नहीं है इन दो मंत्रों से, इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई एक दो ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना, अनाधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीव नष्ट ना करना। अब यहां क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणे का ये तीन मंत्र का जाप है। आठवें अध्याय के आठ नौ दस श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। आठवें अध्याय के पांच और सात में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। अठारहवें अध्याय के बैसठवें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त। और आठवें अध्याय के आठ नौ दस में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए और वापस भी आएंगे, साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूं, आईएएस करके क्या लगूंगा, डिप्टी कमिश्नर लगूंगा, एक बार देख कर आता हूं कैसा होता है डिप्टी कमिश्नर, कैसा ऑफिस होता है। वहां देख भी आया और वापस आकर पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, उड़े धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहां से सफल होकर जाना है, तब वहां मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद, कहां, सतलोक में, सचखंड में।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित कीते जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह दी जानकारी लेन लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।
2: गुर अर्जुन पिखो ने गुर अर्जुन पिखो ने

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110, 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका ते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया। तुद विण सिद्धि किन ना पाईया, करम मिलै नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलियह दूख, सो क्यों विसरै मेरी माई। साचा साहिब साचै नाय रहाओ, साचे नाम की तिल वडियाई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा न होवै घाट न जाई, ना ओह मरै न होवै सोग। देंदा रहै न चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोय। ना को होआ ना को होए, जे वड़ आप ते वड़ तेरी दात। जिन दिन कर कै कीती रात, खसम विसारह ते काम जात। नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सत गुर सत पुरखा, बिना करो गुर पास। हम कीरे किरम सत गुर सरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुर देव, मोकौ राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काही रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाई। ताका रिजक आगै कर धरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्त हरिया। रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै।

सरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघर। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शबद गावण आईया शबदो ता गावह हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो शबद धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित घर सभागै घर सभागै शबद वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनद

नाम जपी नामो सुख सार, नाम जपहो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़े भाग गुरमुख हर लैना। नाम बिना नहीं जीविया जाए, वड़े भाग गुरमुख हर पाए। नाम हीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया। गुर का शब्द रखवारी

गुर शब्द विचारी पाणा पावे खसम का निहचौ निरंकारी इसक मुसक महकार है हुए पर उपकारी सिदक सबूरी साबते मस्ती हुशियारी गुरमुख आप गवाया।